0: to the Love Knot Show every Thursday from 6 till 7 p.m. with Riddles and Mr. Lover. Immerse yourself in captivating love stories, romantic melodies, and heartwarming fun. Let the music speak to your soul. Don't miss out every Thursday evening from 6 till 7 p.m.
1: Oh, yeah.
2: Find it hard to tune in? Jump on the internet, stream live at www.alive905.com.au.
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई